चोलापट्टि धसका लिहाँ भने त मन अन्डोल या नाचन ठनली मनोधरा सखी यशोधरा सहाया दुगुली म ग्यासे जिला जिला हा ज्या जेब दत्तया न्योन्योना ला हाजो लपा बिन्टियाट हे देवदत्त छलपल राजा जुए व छुयागु इच्छा डु उगु कर्म याना बिजाऊ जिगु उपरे सहारी दया तया बिजाट छलपल यागु वचन निने ठुन जुगु शिर छेदन याट जुजु जिम जुजु जिमाला आए आए आए या साझ्यो ठन सुमरु याक्न जिगु शिर छेदन याना बिजाऊ गुप्त दान महादान गुप्त पाप महापाप गुप्त दान धयागु महातरङ्गु दान गुप्त पाप धयागु महातरङ्गु पाप हे राजकुमार संसारी मनुष्य जन्म ज्या विनाशिर दान मयस्य मच्छवनी दैमको बिना जिगु शिर छेदन मयस्य सप्त पाताले गठ्यो भने पाताले वनी मासानो अकनिष्ठ भुवने वनि मासानो सहाय पासा गन बनाइङ्कल अन वनि मालो छल पोलय दाजु आज्ञा दिएका बिजागु न्याना तया दैगु दु अछिया निन्ति जित मच्छे छोइपी कल्याण मित्र छल पोल पी निमडु थौ छल पोल जिगु शिर छेद न्याना पाप मोचन न्याना बिजाउ जिन शिर दान यातका मति तया चनागु ता काल तट जिगु मनोरथ छल पोल पुरे ना बिजाउ मच्छे वने या कारण शिरदान यागु निश्चय याठुन निशंका याना जिगु शिर छेदन याना याक्न जित सुखावती भुवने छया बिजाउ तका बिन्ती याना मुसु मुसु निला देवदत्तया न्यवना भूमिस फोसना बिल मनोधरा सखी भूमिस फोसना चोङ्गु खना लज्जा चाया चोम देवदत्त छ लज्जा चाया वड्या ठड्या मफया बखते बक्ते छे तेना तेना थे मछई धका शङ्खा तम्यका धका आज्ञा दिएका सारी तम्यका लिहा हुन् मनोधरा दुष्ट देवदत्त लिहा वङ्गु खाना खापाटिना यसो धराया थासा होना निमेसिया परस्पर खलाना निशङ्का हेना सयन जुया बिजाट देवदत्त जग छे लिहा हुना मती वलु ठोलु मरेका चिन्ता रूपी अगाटस कुटुम्बना जोरबोम्ठे मछम ताप जुया चक्षी जागरताना याना चोन धैगुख श्री भगवान आनन्द पिचु प्रमुख सकल सभालोकपिन्त आज्ञा देका बिजात इति श्री भद्रकल्पावतानी देवदत्त कामलोभमन परिवर्त नाम तृतीय अध्याय ठौयागु जिगु बाह थने कोचागुदु ठुकी पुन प्रसाद नाक्न सन्निलय याटा इनिसे न्याना दि भई तासे थौयाट प्राविधिक पासा दिलीप जु यात्न सुभ्या बिसे ठोबाह न्याना दि मछिट योको योको सुभ्याडु आफ्नो मियोगु शनिबार गोपा तीर्थ परिवर्त बाहजना जिरिना हुयेगु जे थौ निन्दि वन्त उजा बिहारी सा थौ त सुभ्या जे बाबा।

खोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6

0: ले बालक बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिशा सुना लिंक चैकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छयागु ख वो गनवनी बालक थुका दिशा वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिशा बामलागु घटना जिके मबिता इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिशा सुना खे थया त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिशा सतर्क जुया दिशा थकी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी संदेश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: धार्मिक परम्परा वा संस्कृति सना चौगो छिची लोक बाखा त नेपाल भाषा एकाडेमी अनक मिडिया या नेवाया नेवा एफएम सच्ची वा खुबुटी खु रेडियो सेना दिशा
3: बाखा दबो
2: जिरिना मर्जना प वा पति क शनिबार वा ले पति क सालो खुन सालो मई माया बाखा सुतसिया खुता इले
3: नपा चिकेन बाखन सपुत दुसा बाखन दबु ज्याजो या तबिया गुहाली याना दिसा सपु नेवा एफएम यमसीमा किपु दुई फोन या 433022 एक वो 433422

जोजलपा नेपाल भाषा एकेडेमी निम्ति अनक मिडिया या नेवा नेवा एफएम सच्यो खुफुटी खुमेगास ठौ नेपाल सम्बत झिन्छस हो पी खुद यौला थोपारू अथे विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र 27 गते शनिबार दिशा न्यायको बाहन दबो ज्याजोले जिरिना महर्जन पाखे लसुकुस दु छि बाहन दबो ज्याजोले थिथि बाहन निनाजी भयो ठौजी निस्तानन्द बजाचार्य ज्यू पाखे भाषा अनुवाद यहाँ डेगु मिनबहादुर साकी ज्यू पाखे सम्पादन यहाँ डेगु बौद्ध ग्रन्थमाला सफु पाखे ललित विस्तार सूत्र यागु बाह कनेटेनागु दु ठोसफु जिता भाजु हिरारत्न बजाचार्य ज्यू पाखे बिहा ग्वालिना डेगु ख थौजी गोपा तीर्थ परिवर्त बाह कनेटेनागु दु बाह पुङ न्यानाडिस ओम नमम सर्वबुद्ध बोधि सत्वे सकल बुद्ध बोधि पिण्ड नमस्कार पुनर्वार श्री भगवान आज्ञा दीर्घा बिजाट हे पिछु गणपी ठुकनु रात्रि बिते ज्याओ सेली ईश्वधरा मनोधरा निम्मदना सदा यथे स्थानना सूची नियमयना अष्टमी व्रतयना श्री तिरत्नायत लुमंका तारणी बना खुगु इन्द्रयत बसेतया श्री अमुकपास लोकेश्वर यागु ध्यानयना जगत उदारिया फेमा धका बोधि ज्ञान उत्पन्नयना स्वामी यागु दर्शनया स्वामी यागु दर्शन याना मोक्ष मने थका इच्छा याना व्रत याना व्रत यागु प्रसाद जना माजु ससबौ निमेषित प्रसाद बिया चरण कमले भोपिया ठगु अन्तपुरे लेहा बिजाना पालयना बिजा ठुगु प्रकार मोक्ष फल ल्या ढका इच्छा याना बिजा म यशोधरा महारानी मनोधरा सखी नाप निथ व्रत याना ससबौ माजु निमेषियागु सेवायना थ स्वामी राजकुमार यात हिद्रेय भजन याना फलफूल भजन याना चित्त सन्तोष याना धर्मया बाहन याना ठ मन पाठ याना सखी पिन्दन पाठ्याका इच्छा दान याना देवदत्त आदि दुष्ट जन पिन्स न्यागु अपराध या सान क्षमा याना धैर्यवती जिया तथागत पिनिगु ध्यान याना लोक हित जिगु जाइना मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ठोप्यङ्गु बिहारे धरलपा च्यागु अङ्ग सहित ज्याचङ्गु अस्ताङ्ग उपसोत व्रतयाना माजु ससबौ निमेषिन मानेयाका अन्तपुरे चनाचौपी सकल लोक पिनिगु चित्त स्वाहेका दया तया विरह शोक दको लोमङ्का निथ व्रतयना बिजाना जन दुष्ट देवदत्त निथ यशोधरा यागु चुक माला चन सुदोधन महाराजा या त छल छल कपट या ढका तत्पर या नाचन कठौथी गुलाफना जिला दसियली छनिय दिने सुदोधन महाराजा गौतमी महारानी या त आज्ञा देकर हे प्रिय गौतमी हो मचा यशोधरा या मचा बिगु बखत जुललाकी मजुनी भौ मचा या गर्भवती जुल तका तागु समाचार न्यान मात्र न पुत्र नाप वियोग ज्या चनागु शोक दको हरण ज्या हुन अवश्य न युवराज जन्म जुए साख्य कुल स्त्री म बालक यागु ख्वा सया ता काल जीविका ज्या चने तहदिग जीव छत्र चामर आदि सहित याना राज्य विषेक बी ठुम्बचा पाठे चौ बले थुली ठुली हर्ष जुल दासेली जन्म जीवले गुली हर्षजी नाना प्रकार बाध्य थाका हर्ष बढाइयाके सर्वार्थसित राजकुमार जन्म जीवले सिन सच्ची दोबर सल्ल किसी रथा आदि दान या युवराज यागु जय मानियाका प्रजागणपी सकसित भोजन याके प्रजागणपी याचकपी सकसित हर्षमान याना आशीर्वाद बी हानु गुरु पुरोहित मन्त्री पारदार प्रमुख असङ्ख्य प्रजागणपी मुङका किसी गएका मङ्गल्याका सिन्दुर जात्रायाका देश चाहिएका जात्राया ठुगु समाचार न्याना बोम याक्न तपस्या पुर्याना क्या मचा यागु ख्वा स्वेदका लिहा वै अलिटिनी क्या मचा छे मचा निम सहित याना सुख भोग याना वृद्धकाल जुए व राज्य भोग तोटा वनाश्रमे वना तपस्याना झिपी निम्म सुखावटी भुवने होने हे गौतमी यशोधराया मचा बिगु बखत जोसा बिङ्के त सामग्री जोरेयामा तर झेगु राज्य छुडु अठेन अभिमान या मजु
अभिमान यासा सर्वज्ञ जो सानो ठयाको कार्य नासजी तका सुदर्शन महाराजा आज्ञा देखु गुन्यना गौतमी महारानी मुसुनिला बिन्तियाट भो स्वामी जी जी छु बिन्तिया यशोधरा दासा गौसिचा छु श्रीमधु ला लाजा पुरेजुल बुटेला मटेनिला जी मस्यु नेना तैगु सोया चनागु ख जी बिन्तिया गथे दासा जित जितटा माई देवी गुलाफना झिला दस्यनी लुम्बिनी बने बिजागु इले सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जन्मजुल संसारे सकसिया उठे मजो गुलिसिया गुला देव जन्मजी गुलिसिया झिला देव जन्मजी कस्तसिया चोपी छमनिमेसिया जग दक्षितक चो कठे लोकपिन सजा गुलाफना झिला देव जन्मजी तका ताए जे अभागिनी जुया निन्ति मचा बिके मन हान गर्भयागु ज्ञान सिया चोम दिदी बना हया केने धासान ठुमिसान ठुकनु बिधका ट्या भई मखु छठी जीवना नेना न्यौ भने धासान लज्जा चाया फस कया केरामा गोटुठे गोठला मुर्छा जुया भने भो स्वामी महिना फुरिएजुल ता चुनी मख्त ठुकु मांस भर गठे जन्म मजी सुवर्ण वस्त्र आदि महामागु सामग्री जोरेना कोठा छगुली परेना तया बिजाहु ठुकुनु भी उखुनु भी धका सुनास्यो पाठे डुबिन समस्यो अठिया कारण सामग्री जोरेना तया छुजे छल पल यागु प्रताप जिउ राजगृह मरुगु वस्तु छुडो अनिमा आदि ऐश्वर्य अस्त ऐश्वर्य सर्वरत्न न परिपूर्ण ज्या चुङ्गुडो अथे जुसान मजा भुइ खुनु सकसिया हर्ष ज्या चनि सारजाम मर्या चनि हे स्वामी निश्चय न छनिया दिने युवराज जन्मजी ठमचा जन्मजिए जीवटिने सकसिया स्वकरण ज्या हर्ष मान्याना भण्डारिया त सहता आज्ञा डेका बिजाट हे भण्डारी भौमचा यसो दराया मचा बिगु त अनुमची विस्तार जी मक्त बिङ्के याट सामग्री दको छु जोरे एना तयार यानाटी हे भण्डारी गठेश्री सूर्य उदय जिया संसार यागु अन्धकार नाश याना बिल वठे सूर्य समान म छे मचा जन्म जिया जिगु शोक रूपी अन्धकार डको नाश याना बि अठिया कारणे युवराज भुए बेङ्के त महामागु सामग्री दको तयार याना भण्डार छौली भरे नाटी तका सुदर्शन महाराजा आज्ञा डेका बिजाट महाराजा यागु आज्ञा न्याना भण्डारी अवस तयार याना ते ढका बिन्तियाना लिया होया महामागु ज्या अरे परे याना सामग्री दको तयार याना भण्डार छौली भरे याना महाराजा या हजुरी वना बिन्तियाट महाराज छल पल एगु प्रताप झेगु राजगृह मरुगु वस्तु छु मरु सर्वे चोङ्गु पाताले चोङ्गु वस्तु जोसा तयार ज्या चोङ्गु डुटासेली मर्त्य मण्डली डुगु वस्तु मरैला सक्ता तयार याना ते डुन धन्य धन्य यशोधरा भाग्यमानी सुखन युवराज जन्म ज्या विजयी यशोधरा या कहाँ मजा बुल धासा छल पल जित प्रसाद मबिला निश्चय नबि यसो धराया गर्व कदाचित भ्या मचा जन्म जुए मखु क्या मचा हे भुए थो बालक जन्म जुए तिनी बान कया चोपी बान लिखया बिउठे शोक दक्को शान्त जुया हुने हे महारा छल पल म्या मचा बुइला सुखिया धका मट्टी शङ्का याना बिजा मटे गठे माया देवी नापा क्या मचा बुई कल गोठे यसो धरायान प्रथम क्या मचा हे बुई नापा सर्वार्थ सिद्ध कुमार जन्म जुया बिजा बोले गठे राजगृह अपाल धन रत्न उत्पत्ति जुया बोल हान ढुक्ती स नाना प्रकार रत्न तया तैगु रत्न दकु चुली जाया वो गुठे यद्यपि

महाबायु वया पिकायन पनालखालस नाना प्रकार बिर्से उत्पत्ति ज्या स्वाहा होया फल सया वल हान पुखुपति पले स्वा चस्वा आदि भया वल हान छन्दक प्रमुख न्यासल दास दासी जन्मजुर कण्ठक प्रमुख अपाल सल किसिन जन्मजुर हे राजन छल पलय पुत्र सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जन्मजी जन्मजुगले छुचु उत्सव जुल ओठे ठया ठयागु पुत्र युवरा जन्मजी बुलेन ठठिए उत्सव उत्सव जुएमा परन्तु नीता कार्य मजीमा सुचु दासा राजकुमार जन्मजिया नेनु दुखुनु मामो माया देवी स्वर्गवास जुल छछौ कार्य हानु यौवन अवस्थासँग राज्य त्यागना तपवन विजयगु ठुनिगु कार्य गुब्ले मजुमा किन्तु सुधासा सकल लोकपी चना चौथे गृह धर्म सचना धर्म न प्रजा पालना यही मजुमा ए महाराज अपाल खलाना चना छु सिद्धिमरु निश्चय न यशोधरा पुत्र रत्न जन्म जन्मेना विधका भण्डारी बिन्तिया सेली सुधरन महाराज मुसु न निला तरास्तु सधारे जिए माधका आज्ञा दिएका विदा बिया छ ठुकुनु निसे सुधरन महाराज निथ मनस हर्षमान्यना छनय दिने थौजा मचबी फासुएधका आशायना बिजाट उखुनु न मचबिया मचा मविया गौतमी महारानी याके नेना बिजाट हे प्रिय गौतमी बहुमचा यशोधराया आतले मचा मबुनी गब्ले बुई छे चायागु ख्वा गब्ले खनी जिधासा ख्वा सुयगु इच्छा जुल ओहो आश्चर्य संसारे दैव दया म बरा बरा बलवान लोकपिंस इच्छायागु कार्य प्रियगु महाकस्त सो सो यशोधरा यशोधराय पाठे डुगु झिलाफुना उनी ढुङ्कल अठेन मचा मभुनी फलाहार याना जम यशोधरा गर्व दुख गथे सहाय नाचनी धका माया तया थगु मन याट थमटु बोड्याना बिजाट गठे दासा ए मन छ हठ्याचाया मध्ये छ दासा याक्न ख्वा सुयगु इच्छा याट छ इच्छा यागु ये बुला छन्य दिने बुका अले छन् त किन्ने ए मन दैव यागु इच्छा जग पुर्यजी छु इच्छा पुर्य जुई मखु छुयागु सामर्थ डु छुयागु सामर्थ मरु अठे संसारे दैव हय बलवान लोकपिन्त सुख याकिम दुख याकिम कार्य सिद्ध याकिम असिद्धि याकिम दैव छ हरभरे जी मध्ये ठुगु इच्छा टोटा सदाए थे या नाचो छन्य दिने भले सुहा थे चक नाचौ छे मचयागु ख्वा छ खनी दिने निश्चय न पुत्र जन्म जुई निराशया मध्ये छङ्गु आशा पुरे जुई चिनी धका ठगु मन याट ठमन बोर्याना स्त्री पुरुष निमेषिया छे चायागु ख्वा सुए धका तत्पर याना चन करण थे दशिफना वसेली पर पापिस्त देवदत्त राजाया सभा सवया बिन्तियाट भो ज्येष्ठ पिता सुदोधन छल पोलय बहुमचा यशोधरा गर्भवती जुगु दक्षिफुना हुन अठेन संसारे दक्षिदग गर्भिणी ज्या चौपी सुदु छल पोल निनी नमको हान पाटो टोटा ओ पिनी गथे मचा पाठे दै ठुन विचारेना बिजाउ दाजु टोटा बिजागु दक्षि फुट अठेन मचा मभुनी जित जा बरा लज्जा जुल जी बिन्तिया महागु मखु छल पल सिएसु निश्चय न यशोधरा लेवसि लज्जा सरम धर्म टोटा चञ्चल स्वभाव याना चन छल पल विचारेना बिजाउ थका देवदत्त कुमार

ndiyata देवदत्त बिन्ती अगुन्यना सुदर्शन महाराजा लज्जाचाया देवदत्त कुमार ख्वासोया आज्ञा देका बिजत हे देवदत्त जी छुरा संसारे दैव दैम बडा बलवान अच्छा कारण यसो दरायट डोस दे मते ठोयके डोस मरु सदा अष्टमी व्रत एना गर्भ यागु दुःख सह एना चन चञ्चल स्वभाव जोसा शील स्वभाव दु मती पाप मरु लज्जा मचा सान पतिव्रता पर पुरुष भजनाय भजना याई मखु त्यागी अहंकार मरु काम रूपी अग्नि दाहाजुम न मखु हे मूर्ख संसारे मचा बिगु दिन यागु मर्यादा मरु थुखनु बि उखनु बि धका सुना न मस्यु ठगु कर्म भोग ठम ये छजा काल याट निन्दा याथे निन्दा याट गर्भवती जुसेली छन्यो दिने भुइ सिगु सिगु भुइगु थो निता दैव या अधिन झिगु छु लगे मजु थका आज्ञा टेका मती अन्डोलेना बिजाट महाराजा आज्ञा डेगुगु न्याना थम याना वैगु प्रतिज्ञा लुमङका सखिन सहित ज्या चम यसो धराया उपरे क्रोध याना राजा हेत हेलायना बिन्तियात हे महाराज छल पोल पाठे दस्यली छनिय दिने विधका आज्ञा डेका बिजात पाठे दस्यली मजा विधका जिन स्यो तर छु दासा पाटो टोटा वहाँ पिने पाठे डुपी सुमख बीज मरेको वा छो आदि ब्रिहन उत्पत्ति मजो बीज मरेको उत्पत्ति जुगु वस्तु छुडो जित आज्ञा देका बिजाउ हे महाराज यशोधरा पतिव्रतका जिन स्यो तर छु धासा यो भनी जुया निन्ति काम रूपी अग्नि दाहायना तल दाहा शान्त यादका शीतल छाया इच्छा यै अचे दया थया सहाय मनोदा जी छु बिन्तिया छल पल विचार याना बिजाउ हे महाराज छल पलै न्यने सदा योग्य गुख बिन्तियाना बिन्तियाना चना छ जित हे मूर्ख थका आज्ञा देका बिजाट जिजा मूर्ख मजु छल पल विचार याना बिजाउ बोया दाजु जिया निन्ति छल पलय लज्जा जियो जिम्तन लज्जा जुल मखुला समान कुल समान गोत्र ज्या निन्ति दुःख सुख बराबर जे हे राजन छल पल एट लोक अपवाद जाय थका मग्याला थटी जागु दुर्यश पूर्ण जीका गथे पिहाउने लोक यागु ख्वा गथे सुए दाजु पिहा वैसेली पाठे डुम तटा जुया ख्वा सोया चने मालो जी छु बिन्तिया विचार यागु यागुली निपुण जुया बिजा म छल पल विचार याना बिजाउ जी मखुटिया तासा जित राज्य पित्ना छोया बिजाउ मखु धैगु जुसा यसो धराया सखी मनोधराया त सासना याना बिजाउ तका देवदत्त कुमार बिन्तिया सेली सुदोधन महाराज किञ्चित छु पतिचा पत्यार्ज्या अथेन देवदत्त याट प्रति उत्तर मभिषे मति अन्डोल्याना पाठे डुम यसो धरा याद करुणा दया बिजाट लिपाहेन लोकपिंस अपवाद याई थका भएन ज्ञाना देवदत्त कुमार यागु ख्वासोया आज्ञा देका बिजाट हे देवदत्त सुखलाना यसो धरा निश्चयन पतिव्रता ठो पर पुरुष भजना याई मखो गठे ढासा संसारे जन्म जिगु मर्न जिगु थोनिता दैव यागु अधिकार जिगु अधिकार मरु अथिया कारण आनो खुला तक न्यामसिन न्याथे धासान सहेना चने थका यसो धराया उपरे दया तया लज्जा जोसान उत्सुक्याना सुमुक्क चना बिजाट सुदर्शन महाराजा आनो खुला तकनी सोय थका आज्ञा डेगु गुन्जना दुरात्मा देवदत्त ठगु प्रतिज्ञा पुरे मजु गु खना मन आकुल भ्याकुल जियका सारे तमयका यो यो थिएना बिजाउ तर छु धासा ठुगु कार्य याक्न निरोपन याना बिजाउ विलम्ब याना

घटेन। छल पल दैवयागो अजिन जिगु छु लगे मजु तका आज्ञा ढेका बिजा त जी सोया जा ठुगु कार्य छल पल यागु ये अजिन खना छल पल एना मजुगु कार्य छुटु तका बारम्बार नमस्कार याना गब्ने जिगु मनोरथ पुर्य जी तका मठी तया लिहा हुन ठुकुनिया रात्रि सुदोधन महाराजा गौतमी महारानी या त आज्ञा ढेका बिजाट हे श्री गौतमी थौ क्याचा देवदत्त खलागुना जित परा सरमजुल छुया दुःख भोग्या मानिको कर्मजी छुया लोकपिंस अबाध्याका मना मना छुना या छु प्रयोजन बरु सिनाउने गुए फी हे गौतमी छ सोया गचे छ यसोधारा पर पुरुष भजन यही थिए चोला जिजा पत्यार मजु जिगु भाग्य गर्भवती जुल तर छु धासा संसारी सिगु बिगु ठोनिगु दैवयागु अधिकार जिगु अधिकार मरु अध्याकारने छक मनोधरा याट नाप्लाना यसोधरा या गुखुनु निसे गर्भाधान जुल धका नेनासो थटे सुदोधन महाराजा आज्ञा दिएका बिजागु गौतमी महारानी नेना बिन्ती याट हे प्रभु छु आज्ञा दिएका बिजाना मनोधरा अति जामु मखु थजा पर उपकारी यसोधरा याके न छु दोष मरु थोयाट खलाए मात्र न पापलाई ल्या नमट्य निने नमट्य थठी जीवना न्यौने तासा यसोधरा विरह सहाया मफ्या प्राण त्याग्य थटी जामु दुष्ट देव तत्यागु वचन जिजा प्रतीत मजु छल पल आज्ञा देका बिजा थे न्याना बिजाउ ठयागु वचन प्राण प्रमाण न्याना बिजा मजे जित छुया लज्जा निशङ्कायना उत्सुकतायना बिजाउ भो स्वामी नापा ठया पाट डुब्लेस टिसागो सठिया सेल स्वभा बालका जो सानो काम भोग यागुली इच्छा माया सदा धर्म जग विचार या नाचन थो गठे धर्मात्मा वठे थया सिखन धर्मात्मा छल पलय पुत्र समानम पुरुष स्वर्ग मध्ये पादले स दैमको अठि जाम स्वामी लातन काम दाहा मजु दासी छल पल सुखना बिजान छल पलय क्याचा देवदत्त मखु मनाप संगत यहाँ संगत दोष यागु फल बिधका ताल ठुकी छल पल विचार याना सोया बिजाउ देवदत्त तया मजा काल सर्प हिना चोङ्गु श्रीखण्ड माथे भयानक जुया चोम अठिया कारणे यसोधरा याट दया कर्ना तया बिजाउ परचक्र यागु वचन याना बिजा मटे छल पल यागु मन उद्वेग ज्या व सानो यसोधरा या त कदाचित अपमा या मध्ये फलफुल जग भोजन याना तचत तपस्या याना चम यसोधरा या त शासन यागु योग्य मजु हे स्वामी जी छन् दिने यसोधरा अन्तपुर्य वना छु भोजन या यो तका नेना बोले दुःख भोग यामसित दुःख भोजन याका सुख भोजन याका छुया तका तल लिपाजुगु ख शिउला छुटे अथवा स्वप्ने जग छु खनाला जी मस्यु अठे कारण गर्भधान जुगु दिन गर्भधारण जुगु दिन जीवना न्यौने मखुदका गौतमी महारानी बिन्ती याट गौतमी महारानी यागु वचन याना सुदोधन महाराजा प्रतीत ज्या स्त्री पुरुष निम्म सयन ज्या बिजार देवदत्त जग थम यानागु प्रतिज्ञा लुमका राजा जीगु इच्छा याना चन ठुकुनिया रात्रि स बिते ज्या वसेनी राजद्वारे वना महाराजा चरण कमले फोफिया सभा स चना अवसर विचार याना राजा न्यौने वना युवराज जन्म जीगु ख उत्थान याना बिजार सुदोधन महाराजा थटी जामो वे यागु ख तका पुछे न मया ठुगु प्रकार निथ देवदत्त पाप रूपी तुन्ठी कुठुवना
चित्त ब्रह्मयान बिन्तिए बिन्तिए बिन्तिया सानो थोया गुख छुत्ता टका छपा न्याप नन्याना छपा न्याप नित छोया नुगल स्त्रियाना मट अर्थात सुदोधन महाराजा जिला सुदोधन महाराजा जिन चाला तक देवदत्त यागु दुर्वाक्य न्यना शोक रूपी अग्नि दहाजुया जुसानो धैर्यना शोक संताप याना विजाट वृद्ध भाव जुगुली मन यागु तरङ्ग बढे जुया चन यसो धरा जग निथ राजकुमार लुमङ्का शोक गया थव सखी मनोधर नाप खण्डित मयासे अष्टमी व्रतना बिजाना चनथका श्री भगवान आनन्द भिक्षु सहित सकल सभा गणपिण्ड आज्ञा दिएका बिजाट ठनाली कठौठी निज दया वैश्यनी यशोधरा महारानी कर्मरूपी सीमास फल सही गु बखत ज्या वल अर्थात कर्म भोग यागु बखत ज्या वल बिना कर्म यागु दोष मरिएको भोग या माली मखो छगुद्वार सेचन मयासे कर्मरूपी सीमास फल फी मखो ठुकी सेचन यकी म देवदत्त भोग याई म यशोधरा गर्भ क्षेत्र द्वार जुल अग्निधायम वेदना कर्म फल जुल ठनाली छनियो दिने सुदोधन महाराजा सदाय थे राजसभास बिजाना कौशल जया चङ्गु पेलस राजकुमार यागु खबर विचार याना चोपी पुरुष पी भया मिकास खोबी तया बिन्तिया हे प्रभु छल पोलय पुत्र यागु समाचार छगु जनावय अपराध क्षमायना बिजाउ गथे दासा नैरजना नदी यागु थिरे पूर्णशाला सह बिजाना तपस्या पुरे याठका एकान्त बिजाना वाओ फेओ निबाटो मडासे तचको तपस्याना बिजाम छल पोलय पुत्र सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार आहार्यागु त्वटा बिजागु सास डुकागु पितकागु न बन्ध जुल अर्थात् पिछु मृत्यु जे जुल थका छल पलय गोष्ठी दाजु किराया काया मचा तेस धागुन्यना जिमिस सोयावना बोले मृत्यु ज्या चौमठे चना चन रूपन भ्रष्ट ज्या विछन्द रूप ज्या चन अथवा जन्म जरा व्याधि मृत्यु खना ज्ञाना त्यहाँ न्याना चन लाखे जिमिस मस्यो संसार दैगु दैवय अधिन काल याट सुनान बसे तया तै तय फैमखो छल पल विचारेना बिजाउ थका बिन्तियाट राजकुमार मृत्यु जुल थका बिन्तिया गुन्याना सुदोधन महाराजा तैरेया मफया पुत्र यागु ख्वासेगु निराश ज्या आय हाय राजकुमार थका आज्ञा दिएका भूमिस गोटला मूर्छ ज्या हुन सुदोधन महाराजा मूर्छा जुया बिजागु खना पुरोहित मन्त्री निम हतपद दना क्वाटुको घे पुना थना लख सेचन्याना पङ्खा गाका लाहत जोजलपा बिन्तिया हे भूमिन्द्र छल पल छिया निन्ति अधैर्यना बिजाना धैर्यना बिजाउ मिकासँग खोबी विद्या बिजामध्ये हे प्रभु संसारे मृत्यु ज्या जे माम मृत्यु ज्या भने अपाल आयो डुम ताहा माना छोने तर सुदासा जिम्स नेना गुजा राजकुमार भोजी ज्ञान ल्याटका कठोर तपस्याना बिजात थका ढागु नेना मरण जुल धागु मनेना हे राजेन्द्र नापा असित ऋषि बिजाना आज्ञा दिएका बिजागु लो मनला जिमिकेजा लुमनी छल पलय राजकुमार नापा म छन्डक सारथी वया राजकुमार गठे राजकुमार थटे बिन्तियाना हलतका बारम्बार बिन्तियाना चनटिने अथे कारणे जिमिगु ख प्रमाणयाना विजय हौ ठोठाउ ख प्रमाणयाना विजय मध्ये राजकुमार पिहा विमजा पिहा विजय ट जिमित आज्ञा डेका विजाट गठे राशा लोक रक्षा काम कामना न राज्य त्याग्याना
नैरञ्जना नजियाउ तिरेचना निर्धनी मनुष्य थिए सुदान हाना मरेका दुखसिया कठोर तपस्या हिना तपस्याको प्रभाव जगत हित्या फैगु बोधि ज्ञान लना अपालो शिष्य पिन्छ सही च्याना बहुका निमेषियाउ ख्वास श्वेतका आज्ञा डेका विजट छल पल हठ्याचा विजया मध्ये राजकुमार ठाउँमा याना प्रतिज्ञा पुर्याएना लोक उद्धार याना चितन उद्धार या टका गठे तारा गण सहित याना चन्द्रमा विजय ओठे असंख्य शिष्य गण पिन्छ सहित याना विजय चिने अलि चिनी वस पल आज्ञा डेका विजयको बाहु रूपी अमृतना गब्ले वियोग रिमालिगु उत्तमगु सुखभोगला अच्छा कारणे छल पल सक्यागु तटा बिजाउ ठयागु वचन प्रमाणेना विजया मध्ये धैर्यना बिजाउ तका मन्त्री पुरोहित निमेषिन बिन्तियागु न्याना सुदर्धन महाराजा धैर्यना टुपी निमेषियागु ख्वासया आज्ञा डेका बिजा हे मन्त्री हे पुरोहित छिपी निमेषियागु वचन जना जीव दुःख दक्क हरण जुल तर सुदासा जी दत फुटन छमय क्या मचाडु ठोजित ठोटावन अर्था जुगुमती वृद्धा जुल पुत्र या त राज्य बिहा स्त्री न सहित याना तपवन भने धका मती तया चना क्या न जित बनाउन अथे न लोमङ्का चना थौ थटी जागु खन्जेने मालो ठोठे दासान असित ऋषि यागु वाक्य प्रमाण याना छिपी निमेष यागु निमेषियान धागु वचन प्रमाण या टुन छिमीगु वचन याना राजकुमार मृत्युजुल धका दासान प्रत्या जी मक्त छिमीसँग ताठे राजकुमार तरेयाना तरेया मफुगु संसार रूपी महासमुद्र तरे जुय थका दुष्कर तपस्याना जन थका निश्चय या टुन तर सुधासा लोकपुंस अबाध्याय तका बडा लज्जा जुल निदफनाउन अछेन भौमचय मचा मबुनी मेपिनी राजा पिन्स भौमचय मचा मबुनीला छेचयागु ख्वा सुयगु गब्ले तका निनी बले जी सुधका त्या जितला बडा लज्जा जुल हाय हाय दैव संसारे जन्म जुया जनागु धिक्कार हे मन्त्री सु दोष मरु कुले जन्म जुया थरी जाम पुत्र नाप वियोग जुएका जी माना चोनी महेल राज्य बिहा जी गब्ले तपोवन हुने भई हाय दैव थौ तले छे मचायागु ख्वा मखनानी सुयागु ख्वा सुया पुत्र नाप वियोग जुया जङ्गु दुःख लोमङ्का चोनी हाय हाय दैव जी पूर्व जन्म छु धर्म एना होल भाग्य छम क्या मचा दटन जित थित तोटा थोजित टोटा वन हे गुरु जी बहु सिंहनु महाराजा या जीवी प्यम क्या मचा डो जीवी प्यम छेस चना चना लिपा ज्येष्ठम पुत्र ठका जित राज्य अभिषेक बिहा शक्ति न सही त्याना तपोवन विजार धन्य भाग्य मानी कुल कुला कुलायन यागु चरे याना स्वर्गवास जुया विजार थठी जापे भाग्य मानी पी जन्म जुया चोङ्गु कुल जन्म जुल जी जग गथे अभागी जुल हे गुरु माया देवी तोटा वङ्गुली दिग्दार जुया चना ध्यान दयान आन पुत्र नप वियोग जुएका दुःख सिएका चना अठे जु सानो यसो तराया पाठे डुठका धागु नेना दुःख दक्व लोमङ्का चना थौ तले मचा मबुनी गब्ले जन्म जुए थबाल क्यागु ख्वा सया सुखन जीविका जुया चने हे मन्त्री निदफुना मन अठेन मचा मबुनी थय लज्जा महादुख जुएका चना थका आज्ञा डेका पुनर्वार ठुगु मन याट थमन बोर्ड्याना बिजाट गथे टासा हे प्राण लज्जा रूपी समुद्र स धुना चना मजी जिगु शरीर छु सुबासना चना छु प्रयोजन मरु जुगुथ शरीर गति गतिगु धासा निथ शोक रूपी तरङ्ग परे ज्या जीर्ण जी ढुङ्कुगु थटिगु देह चना पाठे चना चम बालक यागु आशा याना चनी माल छ मागु थासे हुँ निराशा याना
याना गुली त मनाचने छनवे दिने त्वटा वनि मानी ता काल मनाचनाए छु फल मरु दुख जग भोग्यामा भोगेया जीगु सुख जी मखो हे प्राण थठी जागु लज्जा रूपी अग्नि दाह जियका छन्त जी गथे धारण याना चने हे मूर्ख दाह सह याना चने माल सुख न शीतल याना चनाउ लज्जा रूपी मल मलिन जिया चङ्गु वस्त्र टिया चन्त छ मच्छा मजुला छ अनेक प्रकार जागु चोलाडु जिउ ठुगु चोला टोटा मेगु सुवास वया चङ्गु चोला सह बास्याउ विलम्ब एना चनी मटे हाई यशोधरा अभागी दुख भोग्याई म पूर्व जन्मसँग छु पाप एना ओल झी मसु ठौ कुलिन जुसान अपजसी जुल जे भौ मजा जुया सुनिता लक्षण बुढे जुया न छुया ठौ त मजा मभुनि गर्व यागु वेदना सहना चन छुया राजकुमार यागु स्वक ग्रस्त जुयाका फलफूल जग भोजन याना घटे सहना चन ठयागु कर्म डोस जग जुलला अथवा गर्वसह चौम मचा जग अल्छिन जुलला ठोछु दहीगु जुल विशेष लज्जा रूपी टुन्ठी सह कुटुवना चौमठे भाग्य न मफट लज्जा दहीगुली मनुष्य यागु चित्त भ्रम याना बियोखनी न्याथे ठाठे धैर्यवान जो सानो सुरा जो सानो मजु लज्जा रूपी शर्म दाहा जुल अठी जो सानो छुया गनवने दैव या हस्त सना चनी माल दैव दैम बडा बलवान खनी तका मिखास खोबी तया बिजाट सुदर्धन महाराजा मिखास खोबी तया आज्ञा डे गुगुन्याना देवदत्त कुमार अहङ्कार सहितना बिन्तियाट हे पृथ्वीपाल जिगु बिन्ती छौ न्याना बिजाउ मिखास खोबी तेगु योग्य मजो छल पल यागु दुःख हरण याइपि जिपी मरुला हे प्रभु जी खगु ताल जी खगु ताल धालला मखुगु धालला पुरै ट्याके न्याना बिजाउ जिगु कोल यागु धर्म दको ठो वस जीगु कुल यागु धर्म डको वस पलस्यो मन्त्री याकिन नेना बिजाउ थटिगु कुले दोष दशेली झिस पुण्य गण ल्याफै मखु झि सकस्या पूर्व जन्म याना वयागु धर्म वा धर्म या फल भाग्य उदय जुल ठोए बिस कन्या निमसायना झिगु कुल दाहायना बिल ठुपी निमेषयना झिगु दाजु वनवास वन जी दाजु याके चेष्टा डुगु जोसा राज्य भोग यागु टोटा उन्निला ठौ भो याट दुख जुहेका वनवास बिचाट हे प्रभु जेगु कुल यागुरी गथे दासा बुढा जुहे व पुत्र याट राज्य बिया पत्नी न सहित याना तप बट उनिगु जित जा अख जुया चन गुली तक थुमिस बास याई उली तक दाजु लिहा बिजाइ मखो निर्विष जुल तासा चिस निमन्त्रणा यामको आफै आफ ठन बिजाए हे मन्त्री जी धैगु खला कि मखु सक्ता सिया चना छ विचार याना या थका जी दाजु न अबुजु न निम्म उठे कर्पिस दोष या त थट दोष तयका चन हाय दैव दण्ड पानी यागु दोष राजकुले महा उत्पाट जुल थया बहु दण्ड पानी राजा विष कन्या याट सकल लक्षण संयुक्त मथका कपट याना बिल थना जी दाजु चे पेटुल स्त्री जन्पी राज्य समेत त्वटा वनवास वन हाय कस्त ठुगु प्रकार निथ विष लिप्त जुएका माना चने जा मृत्यु ज्या वनिगु एपी निश्चेन ठुगु तुमीगु दोष राजकुले उत्पाट जया चन ए महाराज छुलमची जी बिन्ती आया ढुन अठेन छल पल पत्यार मजु ठुगु गती जी ढुङ्कल अठेन भापिए मफु मूर्ख चना चोहथे बिजा नाचन निधतक मचा पाठे तया स्वयं पि मिसा त संसारे सुदुला सुनान धागु न्याना तयागु दुला दही मखु
हे प्रभु यशोधरा मनोधरा ठुपी निम्म व्यवसी पिङ्गु लक्षण डुपी म हो कुलिन्जु सान बेस्याजुल लज्जा मचासे खगु मखगु खलना चञ्चल स्वभाव ज्या छल पोल याद पट्यार याद फलाहार या नाचन छल पोल गति मसिल छल पोल क्या के लो मनाला रङ्गभूमि सना नुम भौ मचा जुया छल पोल न्यने चना लज्जा मचासे जित सुया लज्जा तका दया दया छाम नकचरी थुगु स्वयम्बर याट थमन पत्र चया पाट जुम याट बिहा हम खला कि मखो हे मन्त्री छ विचार या ना स्व ठोमिसा कुलिन नजी कुलिन नजिला संसारे मिसा थैमस्या चिसा लज्जा सरम मखुला अथया अथेतया थया सकी मनोधरा नि थ मिजात नप्ला ओनिम बस यागु मन बसे यागु मन्त्र सया चोपी मध्यस बरा जल जल माम बोली वचन धासा कस्ती समान जुया चन्नताका नापा नजी बारम्बार बिन्ती या डुन अथे न पत्यार मजु ठुमिग्यु मन्त्र यागु प्रभाव ठुम्त सक्कसिन मानिएना त ए राजन छल पल गति मसिल निस्सेन पर पुरुष या लुडुम मचा छल पोल या पुत्र यागु बीज मखो छल पोल या त लज्जा मजु के धासा जिगु वचन प्रमाण याना बिजाहु जी जी खगु ख लानाला जितय बैर भाव याना बिजाट हे प्रभु छल पोल या पुत्र नप संयोग दुई दैगु इच्छा दोषा ठुपी निमेषित शासन याना ठुगु राज्य पिटना छ बिजाउ छल पोल या मछा दैगु जोसा नि यी छनु तक जित राज्य बिहा बिजाउ यी छन् यो पित्रे अनेक प्रकार जत्न जुक्ति याना छल पोल यागु इच्छा पूर्ण याना बि कार्य सिद्धि यागु विद्या सन्जी अभ्यास याना छन् थनी यी छन् यो पित्रे क्या बहु निम्म संयोग याना बि ठुलिया फुसा जग देवदत्त तका माने याना प्रसाद बिहा बिजाउ गुली तक लज्जा जुया जुका चुने छल पोल शोक कया विजया मते छल पोल यागु दुख अरन याई म जिमरुला खला कि मखु हे मन्त्री हे गुरु आज्ञा देका बिजाउ तका देवदत्त कुमार आज्ञा देको गुन्यना मन्त्री पुरोहित निमेषिन जिमसन छु मस्यो तका बिन्तियाना सुमुक चना चन ल्याउ जिम लिपा शनिबार कनि थौ या त जेगु बाह थने कोचाउदु ठुके यगु पुनः प्रसान आख्न शनि लय न्याटा इनिसे न्यानदी फै तासे थौ या त प्राविधिक पासा दिलीप जु यात्न सुभाय बिसे ठुबाह न्याना दिम छिट यको यको सुभाउदु आख्न मियगु शनिबार ठोय ल्यौ रनिगु बाह जना जिरना वेगु येजी थौ या त बनिगु उजा बियादिस थौ या त बा सुभा जेमा।

जोजलपा जी गायक जोजुकाजी रञ्जित नेपाल भाषा एकेडेमी या नीति अनक मिडिया या नेभया भाषा साहित्य व संस्कृति सह नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो न्याना दिशा न्याङ्का दिशा शुभ

0: तले फुक्क भया ज्याटा सिडरला
1: सिरी ढुङ्कल
0: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्याखुठी वना ब्लक याना वेदन
0: तले बैंकेले
1: बैंके
0: खटया
1: अनछाया मालले
0: ओला यामा हुने ठगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याताना जानकारी बियादिस अले ठगु बैंक

0: एटिएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिशा ठगे या त सना चौ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याई म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिशा उमेको विवरण कया बैंक नेना दिशा सतर्क जुया दिशा ठगी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: सूर्य ज्योति सही प्लान सही सोचो सही रोजो
1: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी
2: जोजलपा जिकल्पना महर्जन सालमाठा आरोई नाप संचार कर्मी नेवास नेवा एफएम 106.6 निछिचाची 24 घण्टा प्रसारण जुया चंगुदु नेनादिस नेकादिस www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वा टाइम्स एप्स पाकी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनादिफै

0: अपिल अपिल अपिल सडक सिटीबाट हिँड्ने बानी गरौ, दुर्घटनाबाट बचाउ, नियम अनुशासन कायम गरौ, सत्यताको परिचय दिऊ, जथाभावी पार्किङ नगरौ, सडक सधैं सफा राखौ, सडक नियमको पालना गरौ, सबै नागरिकको परिचय दिऊ, दण्ड र जरिवानाबाट बचौ, सडक पेटीमा सामान नराखौ, बटुवालाई सम्मान गरौ, सबै सहरको परिचय दिऊ। किपु नगरपालिका, महानगरीय प्रहरी वृत्त, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज, नेवा एफएम 106.6।
1: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा हो छि त ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक या कर्मचारी जुगु दाबी या म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित या न दिसा उमेगु विवरण कया बैंक जना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
3: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रबन्धन अभियानले सकसिन ग्वालियर आदि छ। किपु नगरपालिका दुईवटा जागु देवढोका किपु

0: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
1: माइचा सोसा भाइ त लटरी लाटा हो बहिनी विवरण मिलो धासा खाजा दिबो होइ हो
2: सेसे बा सिसा लटरी भए न डियागुला
3: मधु छाठे मुइचा लटरी लागुला बा लागु ए खनी
2: परे महिनागु लटरी गठिना लाइले बा छुजागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनन होला धासा विश्वास याने दिमटे फोने होसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन बिटीए संस्था छिगु पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हे न काइम
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
6: सूर्य ज्योति सही प्लान
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि

तुयु फाले क्याउ बसिनाले जो जो लपा जी राजेश महाजन नेवा छी नेना चुना दिगुटु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिशा नेंगा दिशा।

0: कि जिता छ यगु खसा नेवा नुगदे कि नेवा नुगदे कि
1: जोजलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसा निना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिसा नेंका जिसा नेवा जुयागु गर्व याना जिसा।

0: स्थान छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण काइम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिशा वहाँ छिट ठगे या त सना चोङ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याई म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिशा उमेको विवरण कया बैंक नेना दिशा सतर्क जुया दिशा ठगी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: सिद्धार्थ बैंक पाकिङ जनहित जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: नेवा गहना नेपालीय तिसाख नेवा जातीय गौरव
3: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नशा पेसाया सक्ता सभा ख्यात
2: नेवा गहना रेस्टुरेन्ट खा बहा किपु
3: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
2: नेवा गहना
3: छक अवश्य रुसाजा सानी
4: गौरव।

0: तले फुक्क भया जाटा सिडरला
1: सिरी ढुङ्कल
0: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याजा खुठी बना ब्लक याना वेट न
0: तले बैंकेले
1: बुइंके
0: खटया
1: अनछा या मालले
0: वला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगो बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीको लाटे ठेनीको पाखे बचेज बियादिस
1: सतर्क बियादिस ठगी पाखे बचेज बियादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: हाम्रो सफा
3: बजार क्षेत्रमा फोहर जथाभावी नफालौ डस्टबिनमा फालौ सभ्य नागरिकको परिचय दियौ हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर
4: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका
5: जो जो लपा जी मदन कृष्ण श्रेष्ठ अनक मिडिया ए निभोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो जिना निना सिना निन्दिस सुपा

0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: गर्व यान दिसा।

0: world-class luxury.
1: अले फुक्क भयो जाटा सिडरला
2: सिरी ढुङ्कल
1: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्याखुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बुइंके
1: खटया
2: अनसा या मालले
1: वला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: जोजो लपा जी वैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा जी नेवा टेगो छगु जकस नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या नेओ बोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंका दिस नेना चना जीम सीता सुबै

0: हेत्तेरिका मैया वाले वा हेत्तेरिका ओहो त्यानुका मैया
1: बा कने जु बेस्ट फ्रेन्ड या बर्थडे भयो भने त जित हिराई सेट यान दिने
2: यही छ अब नि सेनो अटे हिराई सेट पुना उन देउ दैला
0: उमेर नला दे मालनी अटे तिसान्ति जित
1: हे नथे आना सन यान बिमानी जित
0: अटे जिद्दी जिया जी मजु हो मैया
1: हे नथा सानो मानी जित
2: अटे जिद्दी जी जुला
1: हे
2: संत न छु माकी
3: जित छुए मुआबा
2: का नु

0: र बैंकिया आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो हेर्न दिस सुन लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन हुनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक हेर्न दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर हेर्न दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: बैंक गुगले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ एपको पे विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिसा उमेको विवरण कया बैंक जना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: स्वच्छ सफा राखी त्यसको जगेर्ना गरौं। किर्तिपुर नगरपालिका २वटा कार्यालय देवढोका किर्तिपुर।
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: साहित्य ओ संस्कृति निवास निवा एफएम 106.6
6: नकाली कान्छीको खुबै राम्रो लजाउने बानी
5: जो जो लपा जी मेहालामी रोशन साक्य।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नशा तो सया सत्ता सभा क्यात
0: नेवा लहना रेस्टुरेंट खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी।

जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले चिकमिसन येन जन दिगु दु भाषा साहित्य हो संस्कृति नेवा एफएम सचिव खुफुदी खु नेना दिसा नेङ्गा दिसा जी

0: नियम पालक नागरिक नै सभ्य नागरिकको पहिचान हो।
1: बजार क्षेत्रमा सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी बसालौं, दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऊ। नौ नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसगे या त सना चौ मुदो नाप बैङ्क या कर्मचारी जुगु दाबी या हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित या न दिस उमेको विवरण कया बैङ्क जना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैङ्क पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: खाजा सोसा भाइ त लटरी लाट बहिनी के विवरण बिल धासा खाजा ढिबो वही हो
1: बा लटरी भएन डुला
2: मधु छ्याठे मुइचा लटरी लागुला बाला खनी
1: भरे महिना गु लटरी गठे न लाइले बा ठुसाउ मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गर न होला धासा विश्वास यानी डिमटे फोन ठगु विवरण गब्ले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छिगो पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काई मको ठोला बैंक हे न काई मको
3: सतर्क जारी छ ठगी पाखे बचे जारी छ
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहितय जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

श्री रामकृष्ण दुआल।

0: Television. सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: Siddhartha Bank, Sambandha, Sadai Bharilai.
2: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
3: जोजलापा संगीत साहित्य संसार खेले लसता न्याना चुनामा नेपाल भाषा या सेवा भाव न्याजना चुनामा जी सुरज बीर बजुआचार्य शेष थुगुले न्याना चुना तिगुदु नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मीडिया या नेवाया नेवा FM सचिव खुफुती खु मेगा हर्ज जी सक्सीगु गौरव नेवा FM सकसिन अन्यनी सकसित अन्यके नेवा भाषा या रेडियो संसार या छगु दसु सक्ले जाना धिसी धाके

0: नियम पालक नागरिक नै सभ्य नागरिकको पहिचान हो।
1: बजार क्षेत्रमा सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी बसालौ, दुर्घटनाबाट बचौ र बचाऊ। 9 नम्बर वडा कार्यालय, कृतिपुर नगरपालिका।
2: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसा हो छि त ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक या कर्मचारी जुगु दाबी याइम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिसा उमेको विवरण कया बैंक न्याना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

जिगिठो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले चिकमिसन हेन चना दिगुदो भाषा साहित्य हो संस्कृति या सख नेवा एफएम सचिव खुफुदी खु नेना दिशा नेङ्गा दिशा जी नेवा

0: एरम, राम, एरम,
1: हजुर भाइ,
0: वो किधर यू ढोच का पुलिंबा कॉलेज है था?
1: जी मलाटा भाई,
0: खुर का ढोच का पुलावा ना?
1: हाँ

0: रुपियाँमा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट हाबहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजा स्वामी
2: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो याना दिस सुन लिङ्क च्याकेन्य वो छुकिया नीति ख सुना छया हगु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थ या त शङ्खा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: जथाभावी रुख नकाटौं वन जंगल हरियाली जोगाऊ तोल बस्ती वातावरण सफा राखौं पर्यावरण बचाऊ
5: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं कीर्तिपुर चार ओडाको चम्पादेवी दर्शन गरौं
4: सधैँ सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं कीर्तिपुर नगरपालिका चार वडा कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौँ
6: जोजुलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति सँग नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो निर्णय दिशा निङ्का दिशा जी हरिवंश आचार्य शुभ

0: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रवर्धन अभियानले सकसिन ग्वालियर दिस किपु नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढोका किपु
1: सिद्धार्थ बैंक पाकिङ जनहित जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: अले फुक्क भया झटा सिडर ला
1: सिरे ढुङ्कल
0: छङ्गो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक याना ला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
0: अले बैंकेले
1: बैंके
0: खटा या
1: अनछा या मालले
0: ओला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगो बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीको लाटे ठेनीको पाखे बचे जुयादिस
1: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
2: Siddhartha Bank, Sambandha, Sadai Bharilai.
3: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
4: Jojalpa, Jikalpana Maharjan, Salamata Aroi Napon, Sanchar Karmi. Newasa, Newa FM, 106.6, Nichitachi, 24 Ghanta, Prasaran Juya Changudu. www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वा टाइम्स एप्स पाखे मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फाई

0: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकिया नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

गुजुलपाल नमस्ते जी कलाकार राजी किपु जी सकल नेवाते गुस्व नेवा एफएम 106.6 इचित छि कवि सुन्दर प्रसारण ज्यात गुरु एनालिस निगा दिसवा।

0: माइचा सोसा भाइ त लटरी लाट बहिनी विवरण बिलो धासा खाता धिब
1: लटरी भएन ड्याउला
2: मधु छ्याठे मुइचा लटरी लागुला बनलागु खनी
1: भरे महिनाको लटरी गठिन लाइले बा छुटाउ मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गर न होला धासा विश्वास यानी डिमटे फोन थाउको विवरण गब्ले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छेउ पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हेन काइमो
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

जोजलपा नेपाल भाषा एकेडेमीया निम्ति अनक मिडिया या नेवाया नेवा एफएम सच्यो खुफुटी खु मेघस ठौ नेपाल सम्बत झिन्छस हो पियु खुद यौला थोपारु अध्याय विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र 27 गते शनिबार दिशा न्यायको बाहन दबो ज्याजोले जिरिनाम अर्जुन पाखे लसुकु सद्यो छि बाहन दबो ज्याजोले थिथि बाहन निनाजी भयो ठौ जी निस्तानन्द बजाचार्य ज्यू पाखे भाषा अनुवाद याना ज्यू मिनबहादुर साकी ज्यू पाखे सम्पादन याना ज्यू बौद्ध ग्रन्थमाला सफु पाखे ललित विस्तार सूत्र यागु बाह कनेटेनागु दु ठो सफु जिता भाजु हिरारत्न बजाचार्य ज्यू पाखे बिया ग्वालिना ज्यू ख ठौ जी गोपा तीर्थ परिवर्त बाह कनेटेनागु दु बाह पुङ याना दिस ओम नमम सर्वबुद्ध बोधि सत्वे सकल बुद्ध बोधि पिन्द नमस्कार पुनर्वार श्री भगवान आज्ञा दीर्घा बिजाट हे पिछु गणपी ठुकुनु रात्रि बिते ज्या वसेली ईश्वरधरा मनोधरा निमदना सदा यथे स्थानना सूची नियमयना अष्टमी व्रतयना श्री तिरत्नायत लुमंका तारणी बना खुगु इन्द्रयत बसेतया श्री अमुकपास लोकेश्वर यागु ध्यानयना जगत उदारिया फेमा थका बोधि ज्ञान उत्पन्न यना स्वामी यागु दर्शनया स्वामी यागु दर्शन याना मोक्ष मने थका इच्छा याना व्रत याना व्रत यागु प्रसाद जना माजु ससबौ निमेषित प्रसाद बिया चरण कमले भोपिया ठगु अन्तपुरे लेहा बिजाना पालयना बिजार ठुगु प्रकार मोक्ष फल ल्या ढका इच्छा याना बिजा म यशोधरा महारानी मनोधरा सखी नाप निथ व्रत याना ससबौ माजु निमेषियागु सेवायना थ स्वामी राजकुमार यात हिद्रेय भजन याना फलफूल भोजन याना चित्त सन्तोष याना धर्मया बाहन याना ठ मन पाठ याना सखी पिन्दन पाठ्याका इच्छा दान याना देवदत्त आदि दुष्ट जन पिन्स न्यागु अपराध या सान क्षमा याना धैर्यवती जिया तथागत पिनिगु ध्यान याना लोक हित जिगु जाइना मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा टुप्योङ्गु बिहारे तरलपा च्यागु अङ्ग सहित ज्या चङ्गु अस्ताङ्ग उपसोत व्रत याना माजु ससबौ निमेषिन मानेयाका अन्तपुरे चना चौपी सकल लोक पिनिगु चित्त स्वाहेका दया तया विरह शोक दको लोमङ्का निथ व्रत याना बिजाना जन दुष्ट देवदत्त निथ यशोधरा यागु चुक माला चन सुधन महाराजा या त छल छल कपट या ढका तत्पर या नाचन कठौथी गुलाफना चिला दसियनी छनिय दिने सुधन महाराजा गौतमी महारानी या त आज्ञा दे कर हे प्रिय गौतमी हो मचा यशोधरा या मचा बिगु बखत जुललाकी मजुनी भौ मचा या गर्भवती जुल तका तागु समाचार न्यान मात्र न पुत्र नव वियोग ज्या जनागु शोक दको हरण ज्या हुन अवश्य न युवराज जन्म जे साक्यकुल स्त्रियाई म बालक यागु ख्वा सया ता काल जीविका ज्या चने तहजिक जीव छत्र चामर आदि सहित याना राज्य विषेक बि ठुम्बचा पाठे चौ बले थुली ठुली हर्ष जुल दासियली जन्म जीवले गुली हर्षजी नाना प्रकार बाध्य थाका हर्ष बढाइयाके सर्वार्थसित राजकुमार जन्म जीवले सिन सच्ची दोबर सल्ल किसी रथ आदि दान या युवराज यागु जय मानियाका प्रजागणपी सकसित भोजन याके प्रजागणपी याचकपी सकसित हर्षमान याना आशीर्वाद बि हानु गुरु पुरोहित मन्त्री पारदार प्रमुख असङ्ख्य प्रजागणपी मुङका किसी गएका मङ्गलयाका सिन्दुर जात्रायाका देश चाहिएका जात्राया ठुगु समाचार न्याना बोम याक्न तपस्या प्रियना क्या मचा यागु ख्वा स्वेतका लिहा वै अलिटिनी क्या मचा छे मचा निम सहित याना सुख भोग याना वृद्धकाल जिए व राज्य भोग तोटा वनाश्रमे वना तपस्या याना झिपी निम्म सुखावटी भुवने होने हे गौतमी यशोधराया मचा भिगु बखत जोसा बिङ्के त सामग्री जोरेयामा तर झेगु राज्य छुडु अठेन अभिमान या मजु
अभिमान यासा सर्वज्ञ जोसान ठयाको कार्य नासजी तका सुदर्शन महाराजा आज्ञा देखु गुञ्जना गौतमी महारानी मुसुनिला बिन्तियाट पोसामी जी जी छु बिन्तिया यशोधरा दासा गौसिचा छु श्रीमधु ला लाजा पुरेजुल बुटेलला मटेनिला जी मस्यु नेना तैगु सोया चनागु ख जी बिन्तिया गठे दासा जित जितटा माया देवी गुलाफना झिला दशनी लुम्बिनी बने बिजागु इले सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जन्मजुल संसारी सकसिया उठे मजो गुलिसिया गुला देव जन्मजी गुलिसिया झिला देव जन्मजी कस्तसिया चोपी छमनिमेसिया जग दक्षितक चो कठे लोकपिन सजा गुलाफना झिला देव जन्मजी तका ताए जे अभागिनी जुया निन्ति मचा बिके मन हान गर्भयागु ज्ञान सिया चोम दिदी बना हया केने धासान ठुमिसान ठुकुनु बिधका ट्या भई मखु छठी जीवना नेना न्यौने धासान लज्जा चाया फस कया केरामा गोटुठे गोठला मुर्छा जुया हुने भो स्वामी महिना फुरिएजुल ता चुनी मख्त ठुकु मांस भर गठे जन्म मजी सुवर्ण वस्त्र आदि महामागु सामग्री जोरेना कोठा छगुली परेना तया बिजाहु ठुकुनु भी उखुनु भी धका सुनास्यो पाठे डुबिन सम्मस्यो अठिया कारणे सामग्री जोरेना तया छुजे छल पलयागु प्रताप जिउ राजगृह मरुगु वस्तु छुडो अनिमा आदि ऐश्वर्य अस्त ऐश्वर्य सर्वरत्न परिपूर्ण ज्या चुङ्गुडो अठे जुसान मजा भुइँ खुनु सकसिया हर्ष ज्या चोनि सारजाम मर्या चोनि हे स्वामी निश्चय न छनिया दिने युवराज जन्मजी ठमचा जन्मजिए जीवतिने सकसिया स्वघरण ज्या हर्ष मान्याना भण्डारिया त सहता आज्ञा डेका बिजाट हे भण्डारी भौमचा यशोधराया मचा बिगु तनु मची विस्तार जी मक्त बिङ्के याट सामग्री दको छु जोरेना तयार यानाटी हे भण्डारी गठेश्री सूर्य उदय जिया संसार्यागु अन्धकार नासना बिल वठे सूर्य समान म छे मचा जन्म जिया झिगु शोक रूपी अन्धकार डको नासना बि अठिया कारणे युवराज भुए बेङ्के त मामागु सामग्री दको तयार याना भण्डार छौली भरेना टी तका सुदर्शन महाराजा आज्ञा डेका बिजाट महाराजा यागु आज्ञा न्याना भण्डारी अवस तयार याना ते ढका बिन्टियाना लिया होया मामागु ज्या अरे भरे याना सामग्री दको तयार याना भण्डार छौली भरेना महाराजा या हजुरी वना बिन्टियाट महाराज छल पलयगु प्रताप झेगु राजगृह मरुगु वस्तु छु मरु सर्वे चोङ्गु पाताले चोङ्गु वस्तु जोसा तयार ज्या चोङ्गु डुटासेली मर्ज मण्डली डुगु वस्तु मडैला सक्ता तयार याना तेरुन धन्य धन्य यशोधरा भाग्यमानी सुखन युवराज जन्म ज्या विजयी यशोधराया कहाँ मजा बुल धासा छल पलजित प्रसाद मबिला निश्चय नबी यशोधराया गर्व कदाचित भ्या मचा जन्म जुए मखु क्या मचा हे बे थो बालक जन्म जुए जुए तिनी बान कया चोपी बान लिखया बिउठे शोक दक्को शान्त जुया हुने हे महाराज छल पल म्या मचा बुइला सुखे धका मट्टी शङ्का याना बिजा मटे गजे माया देवी नापा क्या मचा बुई कल उठे यशोधराया न प्रथम क्या मचा हे बे नापा सर्वार्थ सिद्ध कुमार जन्म जुया बिजा बोले कति राजगृह अपाल धन रत्न उत्पत्ति जुया बोल हान ढुक्ती स नाना प्रकार रत्न तया तैगु रत्न डकु चुली जाया वो गुठे यद्यपि दनी भूमि सन यद्यपि लखपुर न ज्या चङ्गु थे समतल ज्या नाइसी चना चुनी चिनी
चाग ट्याफी लोह क्या क आदि महावायु वया पिकायन पनाल खालस नाना प्रकार बिर्से उत्पत्ति ज्या स्वाहा होया फल सया वल हान पुखुपति पले स्वा चस्वा आदि वया वल हान छन्दक प्रमुख न्यासल दास दासीपी जन्मजुल कण्ठक प्रमुख अपाल सलकिसिन जन्मजुल हे राजन छल पलय पुत्र सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जन्मजी जन्मजुगले छुछु उत्सव जुल ओठे ठया ठयागु पुत्र युवरा जन्मजी बुलेन ठठे उत्सव उत्सव जुएमा परन्तु नीता कार्य मजीमा सुचु दासा राजकुमार जन्म जिया नेनु दुखुनु मामो माया देवी स्वर्गवास जुल छौ कार्य हान यौवन अवस्थासँग राज्य त्यागना तपवन विजयगु ठुनिगु कार्य गुप्ले मजुमा किन्तु सुधासा सकल लोकपी चना चौथे गृह धर्म सचना धर्म न प्रजा पालना यही मजुमा ए महाराज अपाल खलाना चना छु सिद्धिमरु निश्चय न यशोधरा पुत्र रत्न जन्म जन्मैना विधका भण्डारी बिन्तिया सेली सुदरन महाराज मुसु न निला तरास्तु छे जुए माधका आज्ञा दिएका विधा बिया छोट ठुकुनु निसे सुदरन महाराज निथ मनस हर्षमान्यना छनय दिने थौजा मचबी खुवा सुधका आशायना बिजाट उखुनु न मचबिया मचा मविया गौतमी महारानी याके नेना बिजाट हे प्रिय गौतमी बहुमचा यशोधराया आतले मचा मबुनी गब्ल्यो भुइ छे चायागु खुवा गब्ल्यो खनि जिधासा खुवा सुयगु इच्छा जुल ओहो आश्चर्य संसारे दैव दया म बरा बलवान लोकपिंस इच्छा यागु कार्य प्रिय यागु महाकस्त सो सो यशोधरा यशोधराया पाठे डुगु झिलाफुना उनी ढुङ्कल अठेन मचा मभुनि फलाहार याना चम यशोधरा गर्व दुख गथे सहे नाचनी धका माया तया ठाउ मन याट थमटु बोड्याना बिजाट गठे दासा ए मन छठ्याचाया मध्ये छ दासा याक्न खुवा सुयगु इच्छा याट छ इच्छा यागु ये बुला छन्या दिने बुका अले छन् त केन्या ए मन दैव यागु इच्छा जग पुर्य जुई छु इच्छा पुर्य जुई मखु छुयागु सामर्थ्य डु छुयागु सामर्थ्य मरु अठे संसारे दैव हय बलवान लोकपिन्त सुख या कि म दुःख या कि म कार्य सिद्ध या कि म असिद्धि या कि म दैव छ हरभरे जी मध्ये ठुगु इच्छा टोटा सदाए थे या नाच छन्य दिने भले स्वाहा थे चक नाचङ्गु छे मचायागु खुवा छ खनि दिने निसेन पुत्र जन्मजी निराशया मध्ये छङ्गु आशा पुरे जुई चिनी धका ठगु मन याट ठमन बोर्याना स्त्री पुरुष निमेषिया छे चायागु खुवा सुए धका तत्पर याना चन करन्ठे दक्षिफना उसेली पापिस्त देवदत्त राजाया सभा सहवया बिन्टियाट भो ज्येष्ठ पिता सुदोदन छल पोलय बहुमच यशोधरा गर्भवती जुगु दक्षि फुना हुन अठेन संसारे दक्षित गर्भिणी ज्या चोपी सुदु छल पोल निनी न मको हान पाटो टोटा ओ पिनी गथे मचा पाठे दै ठुन विचारेना बिजाउ दाजु टोटा बिजागु दक्षि फुट अठेन मचा मभुनि जित जा बडा लज्जा जुल जी बिन्टिया महागु मखु छल पन सिएसु निश्चय न यशोधरा लेवसी लज्जा सरम धर्म टोटा चञ्चल स्वभाव याना चन
छल पल विचार हेन बिजाहुँ तका देवदत्त कुमार बिन्टियाट देवदत्त बिन्टियाहु नेना सुदर्शन महाराजा लज्जा चाया देवदत्त कुमार ख्वासोया आज्ञा देका बिजाट हे देवदत्त जी छुरा संसारे दैव दैम बडा बलवान अच्छा कारणे यशोधरायाट दोष दे मते ठोयके दोष मरु सदा अष्टमी व्रत एना गर्व यागु दुःख सह एना चन चञ्चल स्वभाव जोसा शील स्वभाव डु मची पाप मरु लज्जा मचा सान पतिव्रता परपुरुष भजनाय भजना याई ममखु त्यागी अहंकार मरु काम रूपी अग्नि दाहा जुम न मखु हे मूर्ख संसारे मच बिगु दिन यागु मर्यादा मरु थुखनु भी उखनु भी धका सुना न मस्यो ठगु कर्म भोग ठम ये छजा काल याट निन्दा याथे निन्दा याट गर्भवती जुसेली छन्यो दिने भुई सिगु सिगु भुइगु थोनिता दैवया अधिन जिगु छु लगे मजु धका आज्ञा टेका मति अन्डोलेना बिजार महाराजा आज्ञा डेगु गु न्याना थम याना वैगु प्रतिज्ञा लुमङ्का सखिन सहित ज्या चम यसो धराया उपरे क्रोध याना राजा हेत हेलायना बिन्तियाट हे महाराज छल पल पाठे दस्यली छनिय दिने विधका आज्ञा डेका बिजाट पाठे दस्यली मजा विधका जिनस्यो तर छु धासा पाटो टोटा व पिनी पाठे डुपी सुमख बीज मरेको वा छो आदि ब्रिहेन उत्पत्ति मजो बीज मरेको उत्पत्ति जुगु वस्तु छुडो जित आज्ञा डेका बिजाउ हे महाराज यशोधरा पतिव्रतका जिनस्यो तर छु धासा यो भनी जुया निन्ति काम रूपी अग्नि दाहायना तल दाहा शान्त यादका शीतल छाया इच्छा अचे दया थोया सहाय मनोधरा मिज देशे इशारा बिहे हो नाप्ला होनी म आकर्षण मन्त्र याना सक्ले बसे खया साक्य कुल मठन याना चोम थठी म थोया सहाय जुया निन्ति सङ्गत दोष यागु फल बि गठिराशा हे राजन मनु मनाप सङ्गत ज्या त्याव अधर्म गति वनि गठे ढासा मसिनाप सङ्गत या गुली दुर्नाप बुलिया वन वठे निश्चय न सङ्गत दोष यागु फल बिए जिदन बस याना ताया तल थुपी खन्य ग्यासे वैगु जी छो बिन्टिया छल पल विचार याना बिजाऊ हे महाराज छल पल ऐन सदा योग्य गुख बिन्टियाना बिन्टियाना चना झ जित हय मूर्ख थका आज्ञा देका बिजाट जिजा मूर्ख मजु छल पल विचार याना बिजाऊ बौया दाजु जुया निन्ति छल पल लज्जा जुयो जिम्तन लज्जा जुल मखुला समान कुल समान गोत्र जुया निन्ति दुःख सुख बराबर जुए हे राजन छल पल एट लोक अपवाद जाय थका मग्याला थटी जागु दुर्यस पूर्ण जुका गथे पिहा भने लोक यागु खुवा गथे सुए दाजु पिहा वैसेली पाठे डुम तटा जुया खुवा सया चनी मालो जी छु बिन्टिया विचार यागु यागुली निपुर्ण जुया बिजा म छल पल विचार याना बिजाउ जी मखुटे तासा जित राज्य पित्ना छोया बिजाउ मखु धैगु जुसा यसो धराया सकी मनोधराया त सासना याना बिजाउ तका देवदत्त कुमार बिन्टिया सेनी सुदोधन महाराज किञ्चित छु पतिचा पत्यार ज्या अठेन अथेन देवदत्त याट प्रति उत्तर मभिषे मति अन्डोल याना पाठे डुम यसो धरा याट करुणा दया बिजाट लिपाहेन लोक पिन्स अपवाद याई थका भएन ज्ञाना देवदत्त कुमार यागु ख्वासया आज्ञा डेका बिजाट हे देवदत्त सुखलाना यसो धरा निश्चयन पतिव्रता तो परपुरुष भजना यही मखो
गठे ढासा संसारे जन्म जिगु मर्न जिगु थुनिता दैवयागु अधिकार जिगु अधिकार मरु अथ्याकार आनो खुला तक न्यामसिना न्याथ्य दासान सहेना चन्यथका यशोधराय उपरे दया तया लज्जा जोसान उत्सुक्याना सुमुक्क चना बिजाट सुदर्शन महाराजा हानो खुला खुला तकनि सोयथका आज्ञा डेगु गुञ्जना दुरात्मा देवदत्त ठगु प्रतिज्ञा पुरे मजुगु खना मन आकुल भ्याकुल जियका सारे तमयका यो यो ठेना बिजाउ तर छु धासा ठुगु कार्य याक्न निरोपन्यना बिजाउ मिलुम्ब एना बिजा मध्ये छल पल दैवयागु अधिन जिगु छु लगे मजुतका आज्ञा ढेका बिजात जी सोया जा ठुगु कार्य छल पल यागु ये अधिन खना छल पल एना मजुगु कार्य छुटु तका बारम्बार नमस्कार एना गब्ले जिगु मनोरथ पुरे जी तका मठी तया निहाउन ठुकुनिया रात्रि सुदोधन महाराजा गौतमी महारानी यात आज्ञा डेका बिजाट हे श्री गौतमी थौ क्याचा देवदत्त खलागुना जित परा सरमजुल छुया दुख भोग्या मानिगु कर्मजी छुया लोक पिंस अबाध्याका मना मना छुना या छु प्रयोजन बरु सिनाउनि गए फि हे गौतमी छ सोया गचे छ यशोधरा पर पुरुष भजन यही थिए चोला जिजा पत्यार मजु जिगु भाग्य गर्भवती जुल तर छु धासा संसारी सिगु बिगु ठोनिगु दैवयागु अधिकार जिगु अधिकार मरु अथ्याकारणे छक मनोधरा याट नाप्लाना यशोधरा या गुखुनु निसे गर्भाधान जुल धका निनासो थटे सुदोधन महाराजा आज्ञा देका बिजागु गौतमी महारानी नेना बिन्तियाट हे प्रभु छु आज्ञा देका बिजाना मनोधरा अछि जामु मखु थजा पर उपकारी यशोधरा याके न छु दोष मरु थोयाट खलाय मात्र न पापलाई ला मन ल्या न मट्य निने न मट्य थठे जीवना न्यौ मने तासा यशोधरा विरह सहाया मफ्या प्राण त्याग्ये थटी जामु दुष्ट देव तत्यागु वचन जिजा प्रचित मजु छल पल आज्ञा देका बिजा थे न्याना बिजाउ ठयागु वचन प्राण प्रमाण न्याना बिजा मध्ये जित छुया लज्जा निशङ्कायना उत्सुकतायना बिजाउ भो स्वामी नापा ठया पाट डुब्लेस टिसावसा ठिया शिल स्वभा बालका जो सानो काम भो या गुली इच्छा माया सदा धर्म जग विचार या नाचन थो गठे धर्मात्मा वठे थया सिखन धर्मात्मा छल पलय पुत्र समान म पुरुष स्वर्ग मध्य पातले स दै मको अठी जाम स्वामी लातन काम दाहा मजु दासी छल पल सुखना बिजाना छल पलय क्याचा देवदत्त मखु मनाप संगत यहाँ संगत दोष यागु फल बिधका ताल ठुकी छल पल विचार याना सोया बिजाउ देवदत्त तया मजा काल सर्प हिना चोङु श्रीखण्ड माथे भयानक जुया चोम अथिया कारणे यशोधरा याट दया कर्ना तया बिजाउ परचक्र यागु वचन याना बिजा मध्ये छल पल यागु मन उद्वेग ज्या व सानो यशोधरा या त कदाचित अपमान या मध्ये फलफुल जग भोजन याना तचोत तपस्या याना चम यशोधरा या त शासन यागु योग्य मजु हे स्वामी जी छन्य दिने यशोधरा अन्तपुर्य वना छु भोजन यायो तका नेना बोले दुःख भोग यायमसित दुःख भोजन याका सुख भोजन याका छुया तका तार लिपाजुगु खिउला छुटे अथवा स्वप्ने जग छु खनाला जी मस्यु अच्छा कारणे गर्भाधान जुगु दिन गर्भधारण जुगु दिन
जीवना नि न्योनि मखुदका गौतमी महारानी बिन्ती हेर गौतमी महारानी यागु वचन यना सुदर्शन महाराज प्रतिज्ञा स्त्री पुरुष निम्म सयन जुया बिजार देवदत्त जग थम यनागु प्रतिज्ञा लुमका राजा जुगु इच्छा एना जन ठुकुनिया रात्रिस विजेज्या वश्यनी राजद्वारे वना महाराजा चरण कमले भोफिया सभा सना अवसर विचार याना राजा न्योन्योना युवराज जन्म जुयुगु ख उत्थान याना विचार सुदरन महाराजा थटी जामु वे यगु ख तका पुछे न मया ठुगु प्रकार निथे निथ देवदत्त पाप रूपी तुन्ची कुठुवना चित्त भ्रमण याना चित्त भ्रम याना बिन्तिया बिन्तिया बिन्तिया सानो फयगु ख छुत्ता टका छपा न्याप न्याना छपा न्याप न पित छया नुगल स स्त्रियाना मट अर्थात सुदर्धन महाराजा जिला सुदर्धन महाराजा जिन चाला तक देवदत्त यागु दुर्भाग्य न्याना शोक रूपी अग्नि दहा जुया जुसान धैर्य याना शोक संताप याना विजार वृद्ध भाव जुगुली मन यागु तरङ्ग बढे जुया चन ईश्वरधरा जग निथ राजकुमार लुमङ्का शोकया थव सखी मनोधर नाप खण्डित मयास्य अष्टमी व्रत एना बिजना चनथका श्री भगवान आनन्द भिक्षु सहित सकल सभागण पिण्ड आज्ञा देका बिजट ठनली कठौथे निज दया वैश्यनी ईश्वरधरा महारानी कर्मरूपी सीमास फल सही गु बखत जया वल अर्थात कर्म भोग यागु बखत जया वल बिना कर्म यागु दोष मरिएको भोग या माली मखो छगुद्वार सेचन मयासे कर्म रूपी सीमास फल फी मखो ठुकी सेचन सेचन यकी म देवदत्त भोग याई म यशोधरा गर्भ क्षेत्र द्वार जुल अग्निधा याई म वेदना कर्म फल जुल ठनाली छन्य दिने सुदर्धन महाराजा सदाय थे राजसभास बिजाना कौशल जया चङ्गु बेलस राजकुमार यागु खबर विचार याना चोपी पुरुष पी भया मिकास खोबितया बिन्तिया हे प्रभु छल पलय पुत्र यागु समाचार छौ जनवय अपरा क्षमायना बिजाम गथित आशा नैरजना नदी यागु थिरे पूर्णशाला स बिजाना तपस्या पुरे याठका एकान्त बिजाना वावो फेवो निवाटो मडासे तचक तपस्याना बिजाम छल पोलय पुत्र सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार आहार्यागु त्वधा बिजागु सास डुकागु पितगागु न बन्दजुल अर्थात पिछु मृत्यु जे जुल थका छल पोलय गोष्ठी दाजु किजाया काया मच तेस धागुन्याना जिमिस सोयावनाबुले मृत्यु ज्या चौमठे चनाचन रूपन भ्रष्ट ज्या विछन्द रूप ज्याचन अथवा जन्मजरा व्याधि मृत्यु खना ज्ञाना ज्यान्याना चनलाखे जिमिस मस्यो संसार दैगु दैवया अधीन काल याट सुनान बसे तया तय फैमको छल पल विचार एना बिजाउ थका बिन्तिया राजकुमार मृत्यु जुल थका बिन्तिया गुन्याना सुदर्धन महाराजा तैरेया मफया पुत्र यागु ख्वास यागु निराश ज्या आय हाय राजकुमार थका आज्ञा दिएका भूमिस गोटला मूर्छा जुया हुन सुदर्धन महाराजा मूर्छा जुया बिजागु खना पुरोहित मन्त्री निम हतपतना क्वाटुको घेपना थना लख सेचन्याना पङ्खा गाका लाद जजलपा बिन्तिया हे भूमिन्द्र छल पल छिया निन्ति अधेरैयाना बिजाना धैर्यना बिजाउ मिकासङ खोबी विद्या बिजया मध्ये हे प्रभु संसारे मृत्यु ज्या जे माम मृत्यु ज्या भनी अपाल आयो डुम ता माना छोनी तर
सुधासा जिम्स नेनागुजा राजकुमार भोजी ज्ञान ल्याटका कर्थोर तपस्याना विजात थका ठागु नेना मरण जुल ठागु मनेना ए राजेन्द्र नापा असित ऋषि बिजाना आज्ञा देगा बिजागु लो मनला जिमिकेजा लुमनी छल पलय राजकुमार नापा वम छन्डक सारथी वया राजकुमार गठे राजकुमार थटे बिन्तियाना हलतका बारम्बार बिन्तियाना चनटिनी अथया कारणे जिमिगु ख प्रमाणयाना विजया हौ ठो ठाउ ख प्रमाणयाना विजया मध्ये राजकुमार पिहा विमजा पिहा विजया ड जिमिद आज्ञा देगा विजया गठे राजा लोक रक्षया काम कामना न राज्य त्याग्याना नैरञ्जना नटियागु तिरेचना निर्धनी मनुष्य थे सुदान हाना मरेका दुःख सिया कठोर तपस्याना तपस्यागु प्रभाव जगत हित्या भैगु बोधि ज्ञान लना अपालो शिष्य पिन्स सहित्याना भौका निमेषियागु ख्वा स्वयव स्वेतका आज्ञा डेका विजाट छल पल हठ्याचाया विजया मध्ये राजकुमार ठमयनागु प्रतिज्ञा पुर्याना लोक उद्धारेना चितन उद्धारिया टका गठे तारागण सहित्याना चन्द्रमा विजय ओठे असंख्य शिष्यगण पिम्स सहित्याना विजय चिने अलि तिनी वसफल आज्ञा डेका विजयागु बाहरूपी अमृतना गब्ले वियोग रिमालिगु उत्तमगु सुखभोगला अथ्या कारणे छल पल सक्यागु तटा बिजाउ ठयागु वचन प्रमाणेना विजया मध्ये धैर्यना विजाहु तका मन्त्री पुरोहित निमेषिन बिन्तियागु नेना सुदर्दन महाराजा धैर्यना टिपी निमेषियागु ख्वासया आज्ञा डेका विजाट हे मन्त्री हे पुरोहित छिपी निमेषियागु वचन नेना जिगु दुःख दक्क हरण जुल तर सुधासा जी दत फुटन छमयका समय क्या मजा डु ठोजित ठोटा वन अर्था जुगुमती वृद्धाजुल पुत्र या त राज्य बिहा स्त्री न सहित याना तपवन वने धका मती तया चना क्या न जित बना वन अठे न लोमंका चना थौ थटी जागु खन्यने मालो ठो थटे तासान असित ऋषि यागु वाक्य प्रमाण याना छिपी निमेष यागु मेसियान धागु वचन प्रमाण या टुन छिमिगु वचन याना राजकुमार मृत्युजुल तका तासान प्रत्यार जी मक्त छिमिस ताठे राजकुमार तरेयाना तरेया मफुगु संसार रूपी महासमुद्र तरे जुए तका दुष्कर तपस्याना चोन थका निश्चय या टुन तर सुधासा लोकपिंस अबाध्य तका बडा लज्जाजुल नि दफनाउन अठेन भौमचय मचा मभुनी मेपिनी राजा पिन्स भौमचय मचा मभुनीला छे चयागु ख्वा सुयगु गब्ले थका निनी बले जी सुधका त्या जितला बडा लज्जा जुल हाय हाय दैव संसारे जन्म ज्या जनागु धिक्कार हे मन्त्री छु दोष मरु कुले जन्म ज्या थटी जाम पुत्र नाप वियोग जुए जुएका जी माना चोनी महेल ठो राज्य बिया जी गब्ले तपोवन ओने फै हाय दैव थौ तले छे मचायागु ख्वा मखनानी सुयागु ख्वा सोया पुत्र नाप वियोग जुया जुङ्गु दुःख लोमङ्का चोनी हाय हाय दैव जी पूर्व जन्म स छु धर्म एना होल भाग्य छम क्या मचा दटन जित थोजित टोटा वन हे गुरु जी बहु सिंहनु महाराजा या जिबी प्यम क्या मचा डो जिबी प्यम छेस चना चना लिपा ज्येष्ठम पुत्र ठका जित राज्य विषेक बिया शक्ति न सहित्याना तपोवन बिजार धन्य भाग्यमानी कुल कुला कुलायन यागु चरे याना स्वर्गवास जुया बिजार थठी जापे भाग्यमानी पी जन्म जुया चोङ्गु कुले जन्म जुल जी जग गथे अभागी जुल हे गुरु माया देवी तोटा ओङ्गुली दिग्दार जुया चना ध्यान ध्यान हानो पुत्र नप वियोग जुएका दुःख सिएका चना अठे जुसान यसो तराया
पाठे डुढका धागुनेना दुख दक्व लोमङ्का चना थौ तले मचा मबुनी गब्ले जन्म जुई थबाल क्यागु ख्वा सया सुखन जीविका जुया चने हे मन्त्री निधफुनावन वन अठेन मचा मबुनी थे लज्जा महादुख जुएका चना थका आज्ञा देका पुनर्वार ठुगु मन्याट थमन बोर्डेना बिजाट गठिटासा हे प्राण लज्जा रूपी समुद्र सुना चना मजी जिगु शरीर छु छु बासना चना छु प्रयोजन मरु जिगु थ शरीर गठि गठिगु थासा निथ शोक रूपी तरङ्ग परेज्या जीर्ण जी ढुङ्कुगु थटिगु देह चना पाठे चना चम बालक यागु आशा याना चनी माल छ मागु थासे हुँ निराशा याना याना गुली त मना चने छनुए दिने त्वटा वनी मानी ता काल माना चनाए छु फल मरु दुख जग भोग्यामा भोगेया जीगु सुख जी मखो हे प्राण थटी जागु लज्जा रूपी अग्नि दाहा जुएका छन्त जी गथे धारण याना चने हे मूर्ख दाहा सह याना चनी माल सुख न शीतल याना चनाउ लज्जा रूपी मल मलिन जुया चङ्गु वस्त्र टिया चन्त छ मच्छा मजुला छ अनेक प्रकार ज्यागु चोला डु जिउ ठुगु चोला टोटा मेगु सुवास भया चङ्गु चोलासँग बास्याउ बिलुम्बैना चनी मटे हाई यसोधरा अभागी दुःख भोग्याई म पूर्व जन्मसँग छु पाप एना होला।

विशेष लज्जारूपी टुन्ची स कुटुवना सोमठे भाग्य न मफ्ट लज्जा तै गुली मनुष्य यागु चित्त भ्रम याना बियोखनी न्याथे थाथे धैर्यवान जुसानो सुरा जुसानो मजु लज्जा रूपी शर्म दहा जुल अठी जुसानो छिया गन गनवनी दैवया अस्त संचना चनी माल दैव दैम बडा बलवान खनी तका मिकास खोबितया बिजार सुदर्धन महाराजा मिखास खोबितया आज्ञा डेगुगुना देवदत्त कुमार अहङ्कार सहितना बिन्तियार हे पृथ्वीपाल जेगु बिन्ती छौ न्याना बिजाऊ मिखास खोबितेगु योग्य मजो छल पल यागु दुःख हरण याइपी जिपी मरुला हे प्रभु जी खगु ताल जी खगु ताल धाल महुगु धालला पुरै ट्याके न्याना बिजाऊ जेगु कोल यागु धर्म दको जीगु कुल यागु धर्म डको वस पलस्यो मन्त्री याकिन नेना बिजाउ थथिगु कुले दोष दशेली जीस पुण्य गण ल्याया फै मखु जी सकस्या पूर्व जन्म याना वयागु धर्म वा धर्म या फल भाग्य उदय जुल थोए बीस कन्या निमसायना जीगु कुल दहायना बिल ठुपी निमेषयना जीगु दाजु वनवास वन जी दाजु याके चेष्टा डुगु जोसा राज्य भोग यागु टोटा उन्नीला ठौं भो याट दुःख जुहेका वनवास बिचाट हे प्रभु जेगु कुल यागुरी गथे दासा बुढा जुहे व पुत्र याट राज्य बिया पत्नी न सहित जाना तप बट उनीगु जित जित जा अख जुया चन गुली तक थुमिस बास उली तक दाजु लिहा बिजय मखो निर्विष जुल तासा चिस निमन्त्रणा यामयाक आफै आप ठन बिजाए हे मन्त्री जी धैगु खला कि मखु सक्ता सिया चना विचार याना या थका जी दाजु न अबुजु न निम्म उठे कर्पिस दोष याट थट दोष तयका चन हाय दैव दण्ड पानी यागु दोष राजकुले महा उत्पाट जुल थया बहु दण्ड पानी राजा बिस कन्या याट सकल लक्षण संयुक्त मधका कपट याना बिल थना जी दाजु चे पेडुल स्त्री जन्पी राज्य समेत त्वटा वनवास वन हाय कस्त ठुगु प्रकार निथ बिस लिप्त जुएका माना चनेजा मृत्यु ज्या वनिगु एपी निश्चेन ठुगु तुमीगु दोष राजकुले उत्पाट जया चन ए महाराज छुलमची जी बिन्ती आया ढुन अठेन छल पल पत्यार मजु ठुगु गति जुई ढुङ्कल अठेन भापिए मफु मूर्ख चना चोथे बिजा नाचन निधतक मचा पाठे ताया स्वयंपी मिसात संसारे सुदुला सुनान धागुन्याना तयागु दुला दै मखु ए प्रभु यशोधरा मनोधरा ठुपी निम्म व्यवसी भीमगु लक्षण डुपी मखो कुलिन्जु सान बेस्याजुल लज्जा मचासे खगु मखोगु खलना चञ्चल स्वभाव ज्या छल पल याट पत्यार याट फलाहार याना चन छल पल गथे मसिल छल पल याके लो मनला रङ्गभूमि सचना नुम भौ मचा जुया छल पल न्यौने चना लज्जा मचासे जित सुया लज्जा तका दया दया छाम नकचरी थुगु स्वयम्वर याट थमन पत्र चया पाट जुम याट बिहाह म खला कि मखो हे मन्त्री छ विचार याना स्व ठोमिसा कुलिन न जुला संसारे मिसा तैमस्या चिसा लज्जा सरम मखुला अथे तया थोया सकी मनोधरा निथ मिजात नप्ला ओनिम बस्यागु यागु मन्त्र सया चोपी मध्यस बरा जागजलाय माम भोलि वचन धासा कस्ती समान जुया चन्नताका नापा नजी बारम्बार बिन्ती याडुन अथेन पत्यार मजु ठुमिग्यु मन्त्र यागु प्रभाव ठुम्त सक्कसिन मानिएना तर

ए राजन, छल पल गति मसिल निसेन पर पुरुषया लु लुडम लुडुम मचा छल पल या पुत्र यागु बीज मखो छल पल या त लज्जा मजी के तासा जिगु वचन प्रमाण याना बिजाहु जी जी खगु ख लानाला जितए बैर भाव याना बिजाट हे प्रभु छल पल या पुत्र नाप संयोग दुईदयगु इच्छा दोषा ठुपी निमेषित शासन याना ठुगु राज्य पिटनाछ या बिजाउ छल पल या मछा दैगु जोसा यी छनु तक जित राज्य बिहा बिजाउ यी छन् यो पित्रे अनेक प्रकार जत्न जुक्ति याना छल पल यागु इच्छा पूर्ण याना बि कार्य सिद्धि यागु विद्या सन्जी अभ्यास याना छन् थनी यी छन् यो पित्रे क्या बहु निम्न संयोग याना बि ठुलिया फुसा जग देव दत्त तका माने याना प्रसाद बिहा बिजाउ गुली तक लज्जा जुया जुका चुने छल पल शोक बिजा मते छल पल यागु दुख अरन याई म जिमरुला खला कि मखु हे मन्त्री हे गुरु आज्ञा देका बिजाउ तका देवदत्त कुमार आज्ञा देको गुन्यना मन्त्री पुरोहित निमेषिन जिम्स छु मस्यु तका बिन्तियाना सुमुक चना चन जिम दिपा शनिबार कनि थौया त जेगु बाह थनि कोचाउदु ठुके यगु पुनः प्रसाद आख्न शनि लय न्याता इनिसे न्यानदी फैतासे थौया त प्राविधिक पासा दिलीप जु यात्न सुभाय बिसे ठुबाह न्याना दिम छिट यको यको सुभायदु आख्न मेगु शनिबार ठोय ल्यों रनिगु बाह जना जिना वेगु यजी थौया त बनिगु उजा बियादिस थौया त बा सुभाय जेमा।

0: නෙවා ටෙලිවිසන්
1: अले फुक्क भया जटा सिडरला
2: अ सिरी ढुंकला
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याजा खुठी वना ब्लक याना वेठन
1: अले बैंकेले
2: बुइंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: ओला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगो बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीको लाटे ठेनीको पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रवर्धन अभियान सकसिन ग्वालियर दिश किपु नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढुङ्खा किपु
1: थोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6

0: दही प्लान, यो प्लानले प्रिमियम तिरेको 6 गुणासम्मको कभरेज दिन्छ अनि प्रिमियम तिर्ने अवधि पश्चात होल लाइफ कभरेज। 70 वर्ष पुगे पश्चात तपाईँले तिर्नु भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता। म त भन्छु आजै लिनुहोस्। तपाईँ र तपाईँको परिवारको लागि सूर्य ज्योति सही प्लान। सूर्य ज्योति सही प्लान, सही सोचौं सही रोजौं।
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
2: बैंक गुगले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ या कोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा वो छि त ठगे या त सनाचो मुदो नाप बैंक या कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित या न दिसा उमेको विवरण कया बैंक जना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा। सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: हाम्रो पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: जजलपा जी सञ्जीव श्रेष्ठ बडी बिल्डर मोडेल श्री नैना चना जिगुडु भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 नैना दिश नैंका दिश छी जी सकल सिगु स नेवा एफएम 106.6।

0: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, टोल बस्ती वातावरण सफा राखौ, पर्यावरण बचाऊ, रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चार ओडाको चम्पा देवी दर्शन गरौं, सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं। कीर्तिपुर नगरपालिका चार ओडा कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौं।
1: लटरी
2: मधु छ्याठे।

0: ग्राहकको बुझाइ हेर्न जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो हेर्न दिस सुना लिंक चैकेन्य वो छुकी नीति ख सुना छयागु ख वो गन होनी बालक थुका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक हेर्न दिस बामलागु घटना जिके मित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर हेर्न दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी संदेश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
2: जोजो लोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति छ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो निर्णय दिशा निङ्का दिशा जी हरिवंश आचार्य शुभ्या

0: स्थान छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ गोप्य विवरण कायमक हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिस वित ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिस उमेको विवरण कया बैंक नेना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक।

0: अले फुक्क भया झ्याटा सिडरला
1: सिरे ढुङ्कल
0: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेठन
0: अले बैंकेले
1: बुइनके
0: खटया
1: अनछा या मालले
0: ओला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
1: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
3: जथाभावी रुख नकाटौं वन जंगल हरियाली जोगाऊ तोल बस्ती वातावरण सफा राखौं पर्यावरण बचाऊ
4: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं कीर्तिपुर चार ओडाको चम्पादेवी दर्शन गरौं
3: सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं कीर्तिपुर नगरपालिका चार ओडा कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौं
5: जोजलपा जिकल्पना महर्जन सालमाठा आरोई नाप संचार कर्मी नेवास नेवा एफएम 106.6 निछिचाची 24 घण्टा प्रसारण जुया चंगुदु www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वा टाइम्स एप्स पाखी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फै

जोजलपा झिमिया लामी पूर्णमान महर्जन छिसा निना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिस नेङ्का जिस नेवा जुयागु गर्व याना जिस।

0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश।
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
2: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रवर्धन अभियान सकसिन ग्वालियर आदि किपु नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढोका किपु।

0: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याजा खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
0: बुइंके
1: खटया
0: अनछा या मालले
1: वला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
0: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
3: Kajaria Tiles, your world-class luxury.

जो जो लम्पा जे राजेश महर्जन नेवा छि नेना चुना दिगुटु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्गा दिसा।

0: नेवा गहना नेपा देय चिसाख नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नशा पेसाया सत्ता सभा क्याट
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजा सानी
2: सामाजिक सञ्जालले बालकको भुजे याना जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य ओछुकीय नीति ख सुना छयागु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: अवस्था छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिशा व छिद ठगे या त सनाचो मुदो नाप ब्याङ्क कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिशा उमेको विवरण कया ब्याङ्क जना दिशा सतर्क जुया दिशा ठगी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ ब्याङ्क पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन वो छुकिया नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थ या त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: लटरी
1: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: मठ मन्दिर पाटी पौवाहरू हाम्रो पहिचान र पुर्खाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। स्वच्छ सफा राखी त्यसको जगेर्ना गरौँ। किर्तिपुर नगरपालिका 2 वटा कार्यालय देवढोका किर्तिपुर।
1: अले फुक्क भया जटा सिडरला
2: अ अ सिरे ढुंकला
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखनो हे टेलिकम याजा खुठी वना ब्लक याना वेदन
1: अले बैंकेले
2: बैंके
1: खटया
2: अनसा या मालले
1: ओला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलाबुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी छन्दे
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
4: भाषा साहित्य ओ संस्कृति निवास निवा एफएम 106.6
5: नकाली कान्छीको खुबै राम्रो लजाउने बानी
4: जोजोलपा जी मियालामी रोशन साई।